कबीर जी कहने एक घड़ी आधी घड़ी आधी यूं सुन आज पत्थर से ती गोष्ठे जो की न लाभ। अरे लाभ कौन प्राप्त करे और करी पढ़िए

भाई जोगा सिंध कन्ना आवाज़ पई सत पौड़ी तू पै ऐसा किता पिछे मुड़ पे मना कोई तेन वेखदा पे वापस आ गई थोड़ी देरी दे बाद प्यारी सत्संग भाई जोगा से फिर आंदा फिर पौड़ी से पैर रखते हैं फिर कन्ना

अजे भी कोई वेचना पे है। मैं तो समझिया कि हूं कोई नहीं वेचना पर अजे भी कोई टक रहे है मना जरा खैर। तीसरी वेरी भाई जोगा सिंह फिर आवाज केड़ी

नौजवान कहने लगा, मेरे नाल ऐसी बीती कि मर्दा मर्दा में बच के आ गई। मैं आख्या जे मर्दा मर्दा बच के आए वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। जदों सिख सोचन लग पैंदा मैं हुण बचना है ते गुरु दे सिक्खी नूं तिलांजली देनी शुरू कर दी, गुरु नूं पिठ देनी शुरू कर दी। मैं क्या वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। गुरु कलगीधर दे सन्मुख रवि, गुरु तो बिना किसे कम नहीं आउणा। भाई गुरदास सिंह जी कहंदे

0: डानी धानी तुम दानी तालर तुम फिरना तुम फिरना ददर धानी धानी तुम दानी तालर तुम
1: बागड़ दी बिकते मर बागड़ दी तुम फिरना बगर दी ब्रिकते मंग बगर दी तोम दिरना तोम दिरना तोम दिरना तोम दिरना तोम दिरना तोम दिरना।

ऐसी उड़ारी मारी कि मानो दुनिया पलट गई। एक बड़ा ऊंचा पहाड़ है, चार चुफेरे बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। एक छोटा जिया पानी दा तल है, कुछ महात्मा बैठे ने कीर्तन शुरू होया। एक बड़ा ही तेजस्वी पुरुष इन्हां सारियां दे विचकार बैठा है। कीर्तन ऐसा शुरू होया, उस कीर्तन दे विच सारे गवाच गए ने। सुरत ने उड़ारी मारी एक अनुभव नगर जा पहुंचे। ऐसा नगर जिदे बड़े बड़े ऊंचे मकान ने, बड़े बड़े वड्डे महल बने हुए ने, पर ओ महल इट्टां गारे दे ने, हीरे जवाहरातां दे नालों भी सूक्ष्म शहद बने हुए ने। उस शहर नू बेगम पुरा भी कहंदे ने, जिथे गम कोई नहीं। तेजस्वी पुरुष दे नाल असी भी इस शहर के अंदर दाखिल होए हां। इस शहर बारे धन गुरु अर्जन साहब अपने शब्द विच

0: को समझायो इम कह के लोक पठायो।
1: मन नहीं मन रहा पर अकाल पुरख नहीं समझाया। ता दुष्ट दमन जी कहंदे ने संसार विच अंधेरा बड़ा है अज्ञान दा। बचन कीता ऐ प्यारे मैं तेरे विच चानना बन के रवांगा, जिथे तू जाएगा अंधेरा दूर भज जाएगा। ते नाले मैं तेनू अपना पुत्र बना के संसार विच भेज रहे हैं।

दुष्ट दमन जी उस बैबान विच बैठे ने, वो बैबान वापस इस अनुभव नगर बेगमपुरा शहर तो तुरे आ, जिनू आपा सचखंड भी कहने, जिथों तुरे आ सी हेमकुंट नाम दे पर्वत ते असी वापस आए, इत्थे आराम कीता, इत्थों ए बेबान तुरिया किथे जा पहुंचे है। गुरु तेग बहादुर साहब दे महल, माता गुजरी जी दे दीवान खाने, अमृत वेले आत्मक मंडलां वाले जीव स्वागत वास्ते पहला ही हाजिर सन, आरती उतारी जा रही, आनंद मंगल पढ़े जा रहे ने, आत्मक मंडलां वाले खुश हो रहे ने। अचानक प्रकाश होया, हर पासे बनास्पति खिड़ गई, मानो अज दुनिया दा भार हरण वास्ते एक होर जोत प्रगट हो रही है। कुछ घड़ियां बाद हर पासे खबर फैल गई के माता गुजरी जी दे ग्रह एक सुंदर बालक ने जन्म लिया है, ते कलगी तरपातशाह आप लिखते ने कि साडा प्रकाश पटना साहब की धरती से होया। मुरपित पूर्व

हेमकुंड पर्वत जिथे अज हजारां संगतां दर्शन करन वास्ते जांदियां ने, सचमुच मन सच्चा प्यार सच्चा ते कलगीधर पातशाह फिर आप लैण वास्ते अगू आंदा है, अपनी गल दे नाल लगा लैंदा है अपने चरणा दे विच जगह दे दिंदा है। आओ भाई उस दुष्ट दमन दे तपो स्थान दे आपा भी दर्शन करिए, कीर्तन करिए सुनिए, हो सकता है कीर्तन सुनदे हैं साड़ी भी सुरत उडारी मारे ते उस शहर दे विच सानू भी जगह मिल जावे, साड़ा आया सफला हो जावे।

ज्ञानी धनवंत आप सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी धनवंत मृतक कहिया नानका जय है प्रीत नाही भगवंत। बेशक दुनिया दे सुख प्राप्त होवन सारी सृष्टि दा राज भी प्राप्त हो जावे बिना नाम तो मन शांत नहीं बिना नाम तो सुख नहीं। सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया। नाम दे विच ही सारे सुख हन नाम दे विच ही सारे पदार्थ हन। सुखी कौन है जो जप रहे श्री वाहेगुरु। हजूर बाणी विच बख्शिश कर रहे हन के सुंदर सेज होवे अनेका सुख किसी भी सुख की कमी ना होवे। महल माड़िया भी सुंदर होन सुगंधिया भी कपड़िया नू लगिया होन मन बांछत फल मानदा होवे मन इच्छे सुख मानदा किस नाहे भी सूरे कोई फिक्र फाका ना होवे। पर हजूर कहंदन जे परमेश्वर दा नाम नहीं चेते ता ऐसे मनुख नू समझ लो जिस तरह विष्टा दा कीड़ा किसे कम नहीं आउंदा ऐसे तरह ही ओ मनुख है। सो प्रभ चित ना आवे जे नाम चेते नहीं है तो हजूर कहंदन सो प्रभ चित ना आवे विष्टा के कीड़े। कोई बेशक उच्ची कुल दा भी होवे सुंदर भी होवे चतुर भी होवे बड़िया ज्ञान दियां बातां भी करता होवे जे मन करके गुरु चरणा दी प्रीति नहीं तां हजूर कहंदे ओ तां एक मरे हुए पशु दे समान है। क्योंकि दरगाह विच तां अगे करनी कीरत वाची है तेरे मन विच कितना को गुरु दा प्यार है कितना को सत्कार है अगे तां ए वाचिया जाना है। कोई चार अखर घट पढ़ लवे कोई वध पढ़ लवे पर अगे ए नहीं पुछया जाना भाई तू कितनी को पढ़ाई कीती है कितनी को माया कठी कीती है। अगे तो भाई करनी कीरत वाची है की करनी कमाई कीती 24 घंटिया विचों कितना को समा तू परमेश्वर दी बंदगी विच मन करके बतीत कीता है। आ मामूली दुकानदार नू वेखिए सवेर तो शाम तक हिसाब ला लैंदा है अज की कमाया है की गवाया है। मनुख दे 24,000 स्वास बिना जपन तो रोज दे व्यर्थ जा रहे हैं इसने कदी ख्याल नहीं किया। ए चेता कराउंदे हैं जपन वाले ए चेता कराउंदे हैं महापुरख ते जिन्होंने उन्हां दे बचना नू पले बन लिया फिर लोक सुखी पर लोक सुहेले। कबीर जी ने वेखिया एक सेठ बैठा दुकान ते बड़े नौकर चाकर हुक्म दी उड़ीक विच खड़ोते हैं। मन च सोचिया भाई इसनू कदी सत संगत विच नहीं वेखिया ते होवे ना ता इसनू बेनती करिए भाई सत संगत विच आया करो। कबीर जी जा खड़ोते ते फिर ए बड़े हंकार नाल कहन लगा नौकर नू भाई दियो कुछ ते तोरो इसनू क्योंकि हजूर कहंदे ना माया तारी अन्ना बोला गुर शब्द ना सुने बहु रोल कचोला। आपस को दीर्घ कर जाने औरन को लग मात आप तो उत्ते किसे नू समझदा ही नहीं। कबीर जी जा खड़ोते ए भिखारी समझ के अपने नौकरां नू कह रहा भाई कुछ इसनू दियो ते तोरो। कबीर जी कहन लगे सेठ जी मैं मंगता नहीं मैं कुछ मंगण लई नहीं आया। आख्या जे तू मंगता नहीं तां व्यापारी है
आख्या मैं व्यापारी भी नहीं जिस

0: ते नाए तेरे छड़ जाए। पूरन गुरु दी पहुंच लोक परलोक विच है, जिवें शहनशाह मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी अकाल तख्त साहिब दीवान विखे सशोभित हन। आओ बनाओ बिरती दियां अखां, करो उस पवित्र अस्थान दे दर्शन जिथों दी चरण धूड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवते बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया अवतार जिथों दी चरण धूड़ी नूं लोचदे हन। साहिब जी सशोभित हन, गुरु के कीर्तन हो रहे हन, रब्बी अमृत बरस रहा है। दूरों दूरों संगतां आके ऐं समाधि लाई बैठियां हन, कीर्तन विच झूम रहियां हन, जिवें पिपल दे पत्ते दी न्याई, जिवें पिपल दा पत्ता हवा रुमक रही होवे तां झूमदा है, तिवें गुरु के सिख अमृत बरस रहा है कीर्तन दा, ते फिर ए रस पुंज रहे हन, जुड़े हुए हन निरंकार दे चरणां। कीर्तन दी समाप्ति हुई, एक सिख आ पुजा जो हजूर दे चरणां विच आके बड़े सुंदर दो दुशाले लिया के अगे रखे। गरीब नवाज, आप दी बड़ी कृपा हुई है, बड़ी मेहर हुई है, ए दुशाले मैं आप दी भेटा कर सकिया। कुछ समा पहले ही आप जी दे चरणां विच दर्शना लई पहुंचना सी, इदे नाल दे मैं दो दुशाले ले सन, पर जदों मैं आ रहा सां आप जी दे वल तां रस्ते विच पठाना ने घेर लिया। मेरे कोलों ए पट्टी दे पठान दो दुशाले खो के लै गए, नाले मैनू धमकियां भी देंदे रहे, नाले दुशाले भी लै गए। मैं आप जी दे वल आ रहा सां, पर फिर मन विच ख्याल आया कि गुरु दरबार विच खाली हथ किवें चला जावां, तां फिर मैं वापस कर गया। घर जाके फिर दुशाले तैयार करवाए हन गरीब नवाज, ते जंगलां विचों राती प्रभाती रस्ता कटदा होया आप दी कृपा दा सदका मैं इथे पहुंचया हां। ये आप दी कृपा है गरीब निवाज, जे कदे ओह भी तुहाडे चरणां विच पहुंच जांदे तां बड़ी कृपा हुंदी। तां धन गुरु हरगोबिंद साहिब मेरी पीरी दे मालक भाई बिधी चंद नूं बुलाया। भाई बिधी चंद जी सच्चे पातशाह, जा भाई, पट्टी दे पठाणा ने दो दुशाले खो दे हन सिख कोलों, ते तू जाके लै के आ। महाराज तुहाडी कृपा होवे, तुहाडी मेहर दा हथ जे सिर ते होवे ते केड़ी वड्डी गल है। आप दी पहुंच तां सुन के जम के दूत नाए तेरे छड जाए। आप की नहीं करवा सकदे, आप मेहर दा हथ रखो ते फिर केड़ी वड्डी गल है। भाई बिधी चंद सत बचन कह के पट्टी वल तुर पिया। रस्ते विच मुसलमानी लिबास दे कपड़े बनवाए, जिवें मुसलमानियां पहनदियां हन उसे तरह दे कपड़े पा के अखां तक, सिर्फ अखां खाली रहन दितियां, बाकी सारा बुरका चढ़ा लिया, ते किरपान अपने पास रख ली, ते गुरु दी किरपा नाल जा पहुंचिया पट्टी विच, ते सिद्धा ही फिर महलां विच चला गया। जां प्रवेश कीता अगे पटराणी अते होर राणियां बैठियां हन, ते जाके तलवार कढ ली, भाई जेड़े दो दुशाले नवे आए हन ओ किथे हन, छेती लियाओ इत्थे। छेती नाल भज के गए, दुशाले ले आंदे भाई बिधी चंद नूं दे दित्ते। भाई बिधी चंद अपना रस्ता पकड़िया, पर इतने तक उन्होंने रौला पा दिता। जो रौला पाया तां फिर चारे दरवाजे बंद हो गए। उच्चारण करो श्री, पर गुरु मेरे संग सदा है नाले, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਮਗਰ ਹਨ। ਆਪਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲਦਾ ਪੱਠਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
0: ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਕੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ?

0: शिव की मैं शरण जाई शरण
1: ने लिखिया केंदा लंदन विच अडवैर नू मार के ते सूरमताई दा उधम सिंह अंत कर गया के लक्ष्मण सिंह ने लहू दे नाल धोते बे जेड़े जलम के नारायण महंत कर गया के कौम लई कुर्बानी कोई करे फिरला पे जेड़ा ओ पिंडरा वाला संत कर गया के ओ दिलवारा तो हमेशा दुनिया

सत्संग जी गुरु रामदास पातशाह कल्याण महल्ला चौथा प्रभ की जय कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे और ये जो है राग आप श्रवण कर रहे हो ये हमीर कल्याण है। गुरु पातशाह गुरु रामदास महाराज और जो ये रीत है बड़ी पुरातन रीत है पांच साल दी बराबर दी सवारी है और आज छोटे छोटे बच्चे सामने बैठे हैं मैं कह जरा इन्होंने भी हैरान करिए आज तो गुरु दे के क्योंकि इस तरह ही बच्चे सीखते हैं उत्साह बढ़ता है गुण गाण नाल ही रब